बलिहारी गुरु अपने ज्योहाड़ी सदवार जिन मानुस ते देवते किए करत न लगी वा।

तम मरना चीत नावे जप तप संजम धर्म न कमाए सेवा साधना जानिया हर राय कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शरमम कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की

जिन गुर न देखियो न कियो ते अके अथ संसार में बेसुमार अथा अगंत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सतगुरु गुरु गरीब नवाज चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यारे हो सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है। अपने पावन चरण कमलां पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वाले जो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दिया लड़ीवार विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तो सरवण कर दिया हो ओ चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां नाल सांझ पाईए। विचारां आरंभण तों पहलां सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना मेहर भरिया हथ सिर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैण और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रहे दोवें हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदे आं। लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहित सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक बार फिर करो रसनावां पवित्र और

0: विच परम पो पगे।
1: फिर जी अगला श्लोक गुरु अमरदास साहब ने आरंभ किया, उहदे विच मालक जी कहिंदे सुन सिखिया साधना आयो। मैं सिखिया बड़ी सुनी, बहुत सुनी सिखिया पढ़ी बड़ी। हुण सिखिया दा मतलब इत्थे कह लो ज्ञान। सिखिया पढ़ी बड़ी, सिखिया सुनी बड़ी, ज्ञान पढ़िया बड़ा ते ज्ञान सुनिया बड़ा। सतगुरु कहिंदे स्वाद नहीं आया, रस नहीं आया। ज्ञान पढ़न ते ज्ञान सुनन नाल रस नहीं आया। क्यों? क्योंकि ज्ञान कमाया नहीं है। ते जिन्ना चिर मैं पढ़िया कमा नहीं लैंदा, कौन आखेगा वी ये ज्ञानवान है? जिन्ना चिर पढ़िया मैं अपने जीवन विच अपना नहीं लैंदा, सुनिया अपनी जिंदगी च कमा नहीं लैंदा, कोई किवें मन्नेगा भाई इन्हें ज्ञान सुनिया? ज्ञान पढ़िया ते तां ही दिसेगा ना जे जीवन विचों ज्ञान नजर आएगा। ज्ञान सुनिया तां पता लगेगा जे जीवन विचों ज्ञान दिसेगा। ज्ञान पढ़ भी लिया, ज्ञान सुन भी लिया, जिंदगी च दिसिया कुछ भी नहीं, वह कादा ज्ञानवान? मैं गुरु की सिख्या सुन भी लई, गुरु की सिख्या पढ़ भी लई, पर कमाई नहीं। कोई किवें आखेगा भी ये गुरु का सिख्या उत्ते चलण वाला है, सिख्यार्थी है? सिख ते तां ही आ ना जी जे गुरु की सिख्या ते तुरीए। ते जे सानू गुरु की सिख्या ते तुरना ही नहीं आया, असी गुरु दे सिख किवें बन जांगे? सतगुरु ने मोहर लाई, बकायदा मोहर लाई। गुरु बाबा जी का फैसला सुनो, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम त्यावै, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नावै, फिर चढ़े दिवस गुर बाणी गावै, बहिंदिआं उठदिआं हर नाम त्यावै। गुरु रामदास पातशाह का वचन। हुण जे सिख दे जीवन विचों दे सही ना, मालिक ने कहा कहिंदे गुर सतगुर का जो सिख अखाए, जेड़ा गुरु दा सतगुरु दा अपने आप नू सिख अखवाउंदा है, सो ओ सब तो पहला की करदा है? भलके उठ हर नाम त्यावे। वो सब तो पहला नींद त्याग के ते रब नू त्याउंदा है। फिर सो भलके उठ हर नाम त्यावै, फिर की करदा? उद्यम करे। हुण एक गल इत्थे होर, पहला क्या उठ के नाम त्याउंदा। तुसीं आपां जदों खंडे बाटे की पाहुल लैंदे आ, खंडे बाटे की पाहुल लैण तों बाद पंज प्यारे साहिबान जदों मत दिंदे, सिख्या दिंदे, उह आखदे ना जदों शरीरक नींद त्यागणी उदों पहला उठ के अकाल पुरख दा शुकराना करना, कुछ चिर गुरु का सिमरन करना, कुछ चिर परमेश्वर नू चेते करना, सब तो पहला कर्म। फिर दूजा उद्यम करे। सिख कदे आलसी नहीं जे हुंदा, सिख कदे आलसी नहीं है। तो मैं ये कहण च कोई गुरेज नहीं, जेड़ा आलसी है वह सिख खवा ही नहीं सकता। मालक ते कहिंदे जेड़ा गुरु का सिख खवाउंदा उद्यम करे, वह तो उद्यम करदा है। उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नावै। पहलों बंदगी, फिर उठ के इशनान करे, फिर अमृत सरोवर विच ओ गुरबाणी रूपी सरोवर विच फिर इशनान करे, अमृत सर नावै, सत संगत रूपी सरोवर कह लो। चढ़े दिवस गुरबाणी गावै। सिख दे जीवन दा जो रूप गुरु साहब ने बख्शिया, चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदिआं उठदिआं हर नाम त्यावे, ओ रब नू कदे भुलावे ही ना, सिख ते ओ है। हुण सिखिया पढ़ ली, मालक कहिंदे भाई सिख बनन लई आ कुछ चाहीदा, ते मैं आखां जी आपां पढ़े वाओ तां मेरे लई कोई रहत, ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰੋ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰੂਪ ਚ ਉਚਾਰਿਆ। ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਕਵੇ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਨਾਂ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾ ਆਇਓ ਜਿੱਚਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰਨੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੌ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਹੋ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ

0: फिर पौड़ी रूप च
1: गुर सिखा मन हर प्रीत है, उन्हां दे मन विच प्रीत है, प्रेम है। ते जिथे प्रेम होवे उथे ते फिर प्यारे दी पूजा भी हुंदी है। मल कहिंदे गुर सिखा मन हर प्रीत है, गुर पूजण आवे, गुरु नूं पूजण लई फिर ओ आउंदे ने, गुरु नूं पूजदे ने, ओ गुरु की सेवा कमाउंदे ने। हुण इह भी नहीं है मैं कल्ला गुरु नूं पूजी जावां, हुक्म उहदा मन्ना कोई ना, पूजना भी उहदे हुक्म नूं मन्नणा है। इहनूं जिवें पहलां आपां विचार कीती उवें ही प्यो नूं जपिया, प्यो दा हुक्म नहीं मन्निया, बापू कहिंदा भाई हुक्म मन, तेरे जपण नूं मैं की करना। इसे तरह पिता दे अगे निवण लग्या ते मत्था उहदे पैरां ते रख के मत्था टेकदा है, बापू जी तुहाडे चरणां ते नमस्कार। पैरां जिवें आपां रिस्पैक्ट करदे ना, गोडियां थलाया, पैरियां थलाया, ए है अदब प्यो दा, सत्कार। हुण ओह पैरी हाथ भी नहीं लाउणा, गोडियां हाथ भी नहीं लाउणा, सीधा मत्था रख के चरणां ते नमस्कार करनी प्यो अगे। सिर पिता की बड़ी रिस्पैक्ट, एडा वड्डा अदब है ना पिता दे अगे, उहदे चरणां ते मत्था रख के उहनूं फिर आखणा बापू जी मैं तुहाडा सत्कार करना। ते जदों प्यो हुक्म करे पुत फिर मुन करो, जे उहदा मत्था टेकिया की करेगा जी, उहदी नमस्कार कीती की करेगी। जिवें अक्सर आपां करदे आं गुरु ग्रंथ साहिब अगे रोज मस्तक रख के की करदे, नमस्कार, सतगुरु जी मैं तुहाडा बड़ा अदब करदा, बड़ा सत्कार करदा, मैं ते तुहाडे वल किसे नूं अख चुक के वेखण भी नहीं दे सकदा, मैं तुहाडा अदब सत्कार। ते गुरु हुक्म करे ते मैं दौड़ जा, मेरा सत्कार की करेगा। सत्कार दा अंग है और गुरु साहब अगे नमस्कार, पिता दे सत्कार दा अंग है प्यो दे चरणां ते शीश रख के नमस्कार करनी। पर सत्कार दे नाल नाल फर्ज ए वी बनदा प्यो दे हुक्म नूं हर वेले मनना, फिर संपूर्णता है। असी सत्कार दे एक अंग नूं ही सत्कार मन के बह गए भी यही सत्कार है बस, नहीं गुरु साहब अगे रमाला अर्पण करना, गुरु साहब उत्ते चौर साहब की सेवा करनी, गुरु पातशाह अगे हथ जोड़ के खड़ोना, गुरु साहब के चरणा ते नमस्कार कर, ए सत्कार दा अंग है। ते सब तो वड्डा सत्कार है गुरु की गोद विच बह के गुरु के हुक्म नू पढ़ना, गुरु के हुक्म नू सुनना, ते गुरु के हुक्म नू मन लैना। आपां सतगुरु दे कोल चरना च अरदास कीती, अरदास करदे आं गुरु कोल मंगिया ना, दर आई संगत नूं हुक्म बख्शो, आखिया हुक्म बख्शो मालक ने हुक्म। फिर नाल अगली लफ्ज अगली शब्दावली की वरतदे आं, हुक्म उत्ते चलण दी समर्था भी बख्शो, क्योंकि जिन्ना चिर अही हुक्म सुन के उहदे ते चलांगे नहीं मालका, उन्ना चिर अही तेरी नजरां च प्रवान किवें होवांगे। हुक्म सुनना नहीं, हुक्म नूं सुनन दे नाल नाल हुक्म मनना भी है, फिर उहदियां नजरां च प्रवानगी है। गुरसिखा मन हर प्रीत है, गुर पूजण आवे, जिवें एक बचन आपां होर, सेवक सिख पूजण सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी, गावया सुनिया तिन का हर थाए पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। जेड़ा गुरु की आग्या नूं सत करके मन लैंदा परवानिया ओ ही जांदा है। फिर कहिंदे हर नाम वणजह रंग स्यों, ओदे रंग विच रंगे हुए नाम नूं वणजदे ने, लाहा हर नाम लै जावे है, ते जिन्ने नाम दा व्यापार कीता फिर नाम दा लाहा भी उन्हें खटिया।

फिर शब्द की संपूर्णता की, कहिंदे जी तिन्ना गुरसिखां कौ हौ वारिया, उन्हां गुरसिखां तो मैं कुरबान जाना जो बहिंदियां उठदियां हर नाम ते आवे। ओ जिन्हां दा जीवन बन जांदा रब दी बंदगी, जीवन दा आधार बन जांदा रब दी बंदगी, मल कहिंदे मैं उन्हां गुरसिखां तो कुरबान जाना। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै, जेड़ा आप जपदै होर नानू जपाउंदै। साहिब कहिंदे मैं उन्हां सेवकां गुरसिखां दी चरण धूड़ मंगदा। इस तरह जी गुरु रामदास पातशाह जमत दे रहे, मालक अगे अरदास कर दे रहा, करो गुरबड भागी पाया, ऐसा गुरबड भागी पाया, गुरबड भागी पाया, ऐसा

मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग नाल गई पले सब किछ पाए। फरीदा जो तै मारन मुक्कियां

0: प्रभु को सिमरै से पुरख परदान,
1: प्रभु को सिमरै से फिर मोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे,
0: प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै

0: नानक पावो सुख गनेरे
1: सकल दृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया
0: करोरी बंद न पर हर का नाम जपत निस्तर
1: माया रंग तक न बजावे हर का नाम जपत अगावे
0: मार्ग जात के लाते हर नाम संग हो सुवेला
1: नाम स्वाये नानक गुरमुख प्रंगत पाइये
0: नहीं कोट लख बाही नाम जपत तह पार पराई
1: अनक बिगंजे आय संगारे हर का नाम तत्काल
0: जोन जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम।

0: बंधावे देते अगत अवर लुभावे।
1: प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जस गरी।
0: प्रसाद सबको मन मुक्ता को।

0: संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे
1: साधु के संग सोतन पावे जिस धन ते सबको बरसावे
0: असंग धर्म राय कर सेवा साध के संग शोभा सुर देवा
1: साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत

0: ब्रह्म साधरि बसै नानक उतरे सास सुन रसै।
1: साध के संग सुनो हर नाओ सास संग हर की गुन गाओ।
0: साध के संग ना मन ते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे।
1: साध के संग लगे ब्रह्म मीठा साधु के संकट कट।

0: पुजारी कई कोण आचार बिहारी
1: कई कोण पे तीरथ वासी कई कोण बान घर में उदासी
0: कई कोण वेद के श्रोते कई कोण तपिस

0: जन्म रे बो जोन भर
1: मनुका जो कृगमान सो मूर्ख अंधा गया।
0: हर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुकद आगे।

0: सगले बिरथा
1: अनेक पसिया करियंतर नरक स्वरूप फिर फिरे अवतार
0: अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे तिसे भला।

0: संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग नंदक भी धरे
1: संत के दुखन ते मुख भवे संतन के दुखन काग जो लवे
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन तगद जोन किरमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को चले
0: संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच निचाए।

0: सदा से हटाइए संत का दुखी न मरे ना जीवाइए।
1: संत का दुखी की पुजे नयासा, संत का दुखी उठ चले नरासा।
0: संत का दुख न

0: किस नाही हाथ
1: जिसका कुंभू सुख होए किसका नारा कंट परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिगन न लागे
1: उस मन में कर्णकार कर्ण मेरे सत व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जी
1: ननो ठाकुर कारम सत्संग बिनसे सब संग
0: चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा दुर्गे।

0: एक बछाने कियो सो जी जाने
1: संग जिसका मन मानिया ति नानक तिने निरंजन जाने
0: गुरु प्रसाद अपने आप सुजे तिसकी जानो तिसना बजे
1: साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत
0: अंदर कीर्तन कर बखयान ग्रस में सोई निर्वाण
1: ऊपर जी जन की आशा तिसकी कटिया जम की फाट
0: और मन की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दूर
1: हर ब्रह्मचित आवे सो संसुहेला नहीं
0: जिस पर अपना कृपा करे सो सेवक को किससे डरे
1: जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कारज में आप समाया
0: सो दो सीजिया गुरु प्रसाद सब बुझिया
1: देखूं तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोई
0: न के जन्मे न कछ मरे अपन चलते आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्री
0: आप सगल में आप अनक जुग राजथा।

0: साधु रखे हर गुण गाए अमृत रस
1: उठ गई संत आया सर्व सु नानक ते पाया
0: को जीवालन हार भूखे को देवत
1: शरण।

0: दर्शन सत सत पेखण हर नाम सत सत्यावन हर
1: आप सत सत सब धारी आपे गुण का
0: अवध सत सत प्रवक्ता सुर सत सत जस सुनता
1: जनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या
1: हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
0: दिन पोहे प्रसन्ना जिससे उपजा समय सुमन्ना
1: बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई
0: मुझे भूजन हर बवेक नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
0: ठाकुर के सेवक के मन प्रति ठाकुर के सेवक के निर्मल रीत
1: सेवक जान संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग
0: सेवक पालनहारा सेवक की रखे रंकारा
1: सेवक जिस दया प्रभ धारा नानक सो सेवक साथ साथ समारा
0: अपने जन का प्रदाता के अपने सेवक की सर पर रखे
1: अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक की आपत रखे ताकि गत मिल कोई न लखे
1: प्रभ के सेवक को कोना पहुँचे प्रभ के सेवक ऊँचते
0: जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दय दिस प्रगटाया
1: की कीरी मह कल राख है भसम करे लश्कर कोट लाख
0: है रख दे
1: मानस जतन करत बहु भात तिसके कर्तव्य थे जा
0: मारे न रखे अवर न कोय सर्व जिया का रखा सोए
1: आहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलक विदानी
0: बारंबार बार प्रभु जपिए पी अमृते मन तंत्र पिए
1: रतन जिन गुरुमुख पाया तिस किच अवर

0: पहर प्रभ से हजूरे को नानक से ही जन पूरे
1: मेरे दिन की ओटले मंत्र अपना तीन जन
0: अपना प्रभु पछाता सो जन सर।

0: गुरुदुर्मत्मल रे गुरुपत्नी हर नाम उतरे
1: गुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते
0: गुरु सिखोर नाम बंदे गुर का सिख पाती है
1: सतगुर सिख का हलत पलस सुवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार
0: गुर के गर्ते जोर गुर की आज्ञा मन में सहे
1: आपस को कर कछ ना जनावे हर हर नाम हृदय
0: मन बेचे सतगुर के पास सेवक के कार्य
1: सेवा करत हुए ने कामी तिसको
0: अपनी कृपा से अपने नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की
0: सो सतगुर जिसे हर नाम एक बार गुर को बल जाओ
1: निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म
0: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म के आप नहीं कुछ परमा
1: ज्ञान पले आना जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी
0: सो दर्शन पे कुपुनीत पर सचन निर्मल रीत
1: राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह
0: सुनकर बचन कन्या मन

0: करना।
1: सजनों की मंगो तुर पर ब्रह्म श्रद्धा पूर
0: प्रभु के गुण गाओ साथ साथ प्रभु तुम्हें
1: जियाओ लगे पीर भगत करो प्रभु की नित नीत
0: को आधार नानक मांगे नाम प्रभु
1: महासुख हो।

0: बिसरा जिन सब किछ दिया, तो को बिसरा जे जीवन
1: जिया, अग्नि में राखे गुर प्रसाद को बिल्ला लाखे,
0: तो बिसरा जे बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा गन, गुरपुरे
1: से बजाया प्रभना नान जन धाया,
0: साजन संत करो ए काम आंते आग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर।

0: के प्राण हटार
1: पुनीत भगत पाए लावे मन ही
0: हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पूरक भगवान
1: वैकुंठ मुक्त मोक पाए निमक हर के गुण गाए
0: राज भोग बढ़े आई हर के

0: जब निर्गुण तम से स्वभाव तब से सकत कहो कत खाय।
1: जब आपे आप अपनी जोत हरे तब कवन निडर कवन कर डर।
0: अपन जुताव करने हर नानन ठाकर अगम पार।
1: नासी सुख आपन आसन है ते जन्म मरण को कहा बिना।
0: जब पूर्ण कर्ता प्रसोय तब जम की तार कौं किस होए।
1: जब अभिगत अगोचर प्रेम एका तब चितर गुवत किस पूछत ले।
0: जब नानन गोचर गद्दे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे।
1: आप आप ही चर जा नानक आप रूप आप ही
0: निर्मल पर।

0: करावन करने हार नाना करते कानाई समार
1: अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुध
0: भाई पर बीनता वेद कहाँ को चीना
1: जब अपन आप आप उर्धा

0: जिस मन बैति साच परिखिया
1: मंत्र नाम जपो लिवलाए धूप धरन मन ते भव जाए
0: सत्यो बार करो बाबारी दरगैन वह खेब तुम्हारी
1: एका टेक रखो मन माए।

कर्ता पुरुष नृपो नृवैरो अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद तेरा कीता जातो नाहीं मैनों जोग कीतोई

तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिले।

आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दोता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तुसदा रहो हर नाले हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाई घर तेरे घर ता तेरे सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे

दशमी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ली ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सहाय अर्जन अर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ

तुद दिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सचा पातशाह। सिर शाह दैशाहो जिस पास बैठे आ सो ही है सबना दा वेसाहो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सूही महला पंजवा, करम धर्म पाखंड जो दिस है, तिन जम जागाती लुटे, निर्वाण कीर्तन गाव हो करते का, निमख सिमरत जित छुटे। करम धर्म पाखंड जो दिस है, तिन जम जागाती लुटे, निर्वाण कीर्तन गाव हो करते का, निमख सिमरत जित छूटे। संत हो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का,

इस कल में मैल परिजय साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजे वेद कतेब सिमरत सब शास्त इन पढ़या मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चहो वरना कौ सांझा

सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब युद्ध करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे।

का मूड उचारत भेदा, जा को भेव न पावत भेदा, ता को कर पान अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न पिव, आपे अपनी बोध जेती, भरणत भिन्न भिन्न तुय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिदस जा प्रथम संग।

कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सगरी शिष्य दिखाई चंभव, आद जुगाद सूप संभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे सोज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखता मरे, पुरख जमन पग परे तिहारे, इनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रक्षा हुए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तद काला, कृपा दृष्ट तन जाए निहरे हो, ताके ताप तनक मोहरे हो, रिद्ध सिद्ध परमो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सके ना कोई।

दर्शन परसिय गुरु के, जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी। नूरे अरसों कुरसों चटिए तो दठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दे कटिए सजन सचा पातशाह। सिर शाह दैशाहो जिस पा

निमख सिमरत जित छूटे, कर्म धर्म पाखंड जो दिस है, तिन जम जागाती लुटे, निर्वाण कीर्तन गाव हो करते का, निमख सिमरत जित छूटे, संत हो सागर पार उतरी है।

वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद तुध आगा अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नौ न जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नौ न जाने मेरा गुरु नानक

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथमा भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासवी सहाय। अर्जनार गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौन दे आवे ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री

तम रात संग रहन कहन अमृत काल टालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करै सदा अकल लिव रहै

0: सत प्रगट्यो रब लोए, दर्शन परसे गुरु के अठ सठ मजन होए, दर्शन परसे गुरु के अठ सठ मजन होए।
1: सच तीर्थ सच इशनान अर भोजन।

लोम वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुरु नाम निद्रे आओ जन्म हम काल धोवे सो को टल गुरु सेविए एहनस सह सुभाए

सत संतोख तरयो उर आद पुरख पर तख लिख्यो अक्षर मस्तक तुर प्रगट ज्योत जगमगे तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस।

जन्म मरण दुख जाए हुए सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह।

गुर पूरे ते जानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक सरबे कायनात दे सांझे रहबर जुगो जुग अटल चवर शतर तखत तथा वक्त दे मालक हाजरा हजूर जाहरा जहूर सम्राट गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान साध संगत जी आप जी बड़ भागे हो जो अमृत विले दे दीवाना अंदर हाजरियां भर के अपना जीवन सफल कर रहे हो। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिया दा अज दा पावन मुखवाक सोरठ राग अंदर पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज बख्शिश करदे ने जो सतगुरु जी की बाणी पावन अंग 625 अते 626 उपर सुभाए मान ने सतगुरु जी कृपा करन अपने हुक्म अनुसार जीवन जिउण दी समर्था सूझ बख्शन जी। आओ अज दे इह पावन बचन अपने हिरदयां अंदर वसाउण दा यतन करिए। सोरठ महला पंजवां जित पार ब्रह्म चित आया सो घर देव साया सुख सागर गुर पाया तां सहसा सगल मिटाया वाहिगुरु जी का खालसा।